0: टीवी मैकेनिक का फोन नंबर हैगा?
1: हाँ जी 647
0: जी
1: 622 3203
0: 647-622-6203
1: नहीं नहीं 3203 सो 647-622-3203 खुशी मिल जाती है सानू के तुसी साडे तो नंबर कोई ना कोई लिया सो प्रोग्राम है पंजाबी रहा ते एक मैं थानू दो कबूल सुनाने हैं ते सुन के फिर वापस आने हैं।

0: क्योंकि उम्र पे डिपेंड करेगा एक तो, बट लाइक जो अप्रोक्सीमेट है दैट इज $160,000. कॉल करें, असेसमेंट कराएं फ्री में, ऑफिस आए 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे हमारा ऑफिस है, 8 साल से आप लोगों को हम सर्व कर रहे हैं. साफ काम है, कोई भी कागज एडिट नहीं होता है इसके अंदर. क्रेडिट स्कोर अगर आपका 0 भी है तो भी आप एलिजिबल हैं. फंडिंग 50,000 से $170,000. टफ टाइम से गुजर रहे हैं, स्किल डेवलप करें, फंडिंग हासिल करें, आसान से कोशिश करें. हमारी फीस काम होने के बाद $199, शुरू में नहीं, काम होने के बाद आपके अकाउंट में फंडिंग जब गिर जाती है तो आपने अपनी ईमानदारी से देने हैं. नंबर नोट कर लीजिए, 437-264-31-75, 437-264-31-75. हमें कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-264-3175.
1: 437-264-3175, 437-264-3175. गल मुकदी है कि तुसी एजुकेशन दे विच वादा करना, स्किल डेवलप करने हैं, पैसा थोड़े कोल है नहीं गा, सरांश नूं मिल लो, पैसे दा इंतजाम करके देंगे, वधिया तुसी दब के पढ़ाई करो, वधिया काम ते लगो. 437-264-3175, 437-264-3175. सरांश थैंक यू.
0: थैंक यू.
1: 3434, हैलो.
2: हाँ जी नवी वीर, सत श्री अकाल
1: जी.
2: की हाल है वीरे?
1: वधिया जी, वधिया. किदा
2: आपा बैठे बैकयार्ड च एंजॉय करन दे ते साडे मतलब मानजोग सत्कार जो के मेरे ब्रदर लो आए ने.
1: ओ वाह भाई वाह, क्या बात है, नेरी सा. अच्छा
2: ते आपा एंजॉय करन दे सारी फैमिली बैठे
1: जी,
2: ते आपा वेलकम करना चाहते सी मैं कहता तोडे रेडियो दे जरे.
1: क्या बात है, थोड़े ब्रदर लो है
2: नवी साहब. हां जी हां जी,
1: ठीक है जी. ब्रदर लो दा की नाम है?
2: मलकीत सिंह, चेयरमैन बराड़ा.
1: ओ वाह, मलकीत सिंह चेयरमैन बराड़ा.
2: जी जी,
1: बहुत स्वागत है जी. मनजीत जी बहुत बहुत प्यार सत्कार ते कैनेडा च, ब्रैम्पटन च, टोरंटो च, पंजाबी लहरां वालों, साडे सारे स्रोतियां वालों थोड़ा तहे दिलों असीं वेलकम करदे आ.
2: ते गाना लवाना चाहुंदे सी यार, रिक्वेस्ट.
1: केड़ा जी, केड़ा गाना सुनना?
2: भाई रंग खुद सुनने.
3: सजना
2: गुरदास मान साहब दा
1: तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर. देख लो टोरंटो आके फिर इधर दे शहर वाली कोई लगदी है सोहनी दोपहर नू. चलो इत्थे तां सोहनी सोहनी फिरदियां. चलो ला दिने, कोई गल नहीं. थैंक यू. धन्यवाद थोड़ा. सो प्रोग्राम पंजाबी लहरां तुसीं सुन रहे हो, ते 905-673-3337 नंबर है अपना, 905-673-3337. ओ बल्ले, आए भी है इंडिया तो इत्थे है, ते गाना भी लवा दा कि सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी

0: HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
1: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Mover।
2: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू अगड़ाता वधिया ते जायज रेट किथों मिलेगा?
3: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
0: क्रिटिकल मॉर्गेज, RESP, RRSP, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
3: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-310-310
0: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
4: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए JTA में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808।
5: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडिया

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

0: करें, हमारी फीस 199 ऑन ईयर कह रहा हूँ, वन टाइम फीस है, दो साल का कोर्स है तो $400, दैट्स इट, कोई हिडन फीस नहीं है। 437-264-3175 4372643175 फीस काम होने के बाद कॉल करें, फ्री एस्टिमेट लें, 437-264-3175
1: 437-264-3175 437-264-3175

0: इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
1: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
0: दोस्तों, देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
3: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेयर। Live and Cellular Point presents AmiWare Live in Toronto.

0: वाले रेडी हो जाओ, बाय योर टिकट्स एट ticketmaster.ca और कॉल 6479648573।
1: चलो एम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्या तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है, ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 to 4 शाम दे 4 तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्यां तों

0: चक्कर लगाओ।
1: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।